0: सारा दिन।
1: रेडिएशन द नंबर वन स्टेशन फॉर द पागल एशियन। पागल एशियन
2: Still bangles.

0: Radiation, the number one station for the fog of Asia.
1: चलो भाजी
2: चल चलिए फिर।